क्या किया? बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते हैं। और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले कहिए महाराज। बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के चार चार हाथ हैं, किसी के दस दस पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके। बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता। लगा अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आ गए। दामे बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें, कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें, नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या, अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? ते माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे, अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तो महाराज उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो पार्वती की बातों में फंस गया। तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के और बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर।
और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पर। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखे होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो, बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है? अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तुमको दे दूंगा, तू कहेगो मुकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर? तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो? अरे मैया तू नहीं जाने तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो, सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटेली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा है, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी? कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है।
अच्छो तुम ही, हम भी यहीं बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहाँ से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे, मैं अपनों काम धंधो संभाल। और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। बोले क्या? बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई, आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहाँ कर रही है? तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहाँ करूं? बोले रो रहे हो है तू या

क्या राई नून लेके अभी तक। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है, बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहाँ है। मैया बोली कहा बीमारी है, बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया अब वह भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई यहाँ तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगो वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मत ले, मैं हूं ना अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ दूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे हुए वालों कोई बाबा चाहिए तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आ एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती मैया ओ मैया बाबा जी मिल गयो भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ेगो और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी? बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कू बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो बता। भैया बोली मोकू तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है बढ़ती जा रही है, गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जा

करने को और नजदीक चली गई, बाबा के और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे झोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र भंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहे हो हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है, कोई एक आयोजन हो एक कार्यक्रम हो उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगा। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक रुक जा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के अपने नागन्ने ने थोड़ो संवार के रख समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया अरे यशोदा मैया तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने, मैया तो को पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तो को पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो, अरे राजा बनेगो नाम रोशन करेगो बड़ो होगो महल बनाएगो तो वो तो या के ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो को तेरे निया कहा चाहिए? बोले मोकू तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले 4 दिन को तेरो छोरा है, अभी यहाँ पे आंख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी और बाबा बता ना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है? अरे मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब? बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी?
बाबा ने कहा, मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती, ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोड़ा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराज

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है।
1: ये मत कहो खुदा से।
0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड बीके शिवानी जी के विचार।
1: ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
2: क्या कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ और थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खुल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए, अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई, हमने ध्यान नहीं रखा तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से है, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते हैं एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है, फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए और कैसा जाए, एक जाए और कैसा जाए, पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वही इक्वेशन थ्योरिटी में भी तो अप्लाई करेगी। दैट इज व्हाई व्हेन वन चेंजेस चेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्ले, नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है, एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट नाइम लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है। हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है, लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है, अच्छा आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका, बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद, अभी देखते हैं, नए नए आए ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही, चार दिन और बीते तो सही, दे तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वहीं ठीक था आश्रम में, ये बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है, नहीं फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हमको भी जाना है वहां पे, हाँ बहुत पीसफुल था अभी वापस हमें 3 दिन। वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर 3 पीसफुल डेज। हम यहां से विधि सीख कर जाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो फोल्डर खोला फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं, अटेंशन कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है रोज, चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा. नो, इट इज डेली. बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल ऑल्सो हैज टू बी नरिश्ड डेली. हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं. तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग. क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे, कमाने में इतने बिजी थे कि हमने रुक कर इसको कभी नरिश ही नहीं किया. आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहां भी जो लोग मिले, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखे. हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर. रियली इट्स एन एपिडेमिक. एवरीवन सेज द सेम लाइन. एंड वो इतना डीप बिलीफ सिस्टम बन गया है कि वो एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं वेरी बिजी, टाइम नहीं मेरे पास. कभी आप सोचो छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से फील करते हैं उनके जीवन में कमी है. सो ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि थकी हुई हालत में सारा काम कर रही है. तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है. वो एक घंटा निकालना पड़ता है सिर्फ थोड़े दिन के लिए. जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो एक घंटा निकाला, तो ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है. जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो फिफ्थ फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन. जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा फिफ्थ फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम, कोई कुछ कहता है ज्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं है. दो बातों में बहुत फर्क है. और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम टाइम टाइम टाइम पहले से कई गुना ज्यादा मिल जाता है. आप जब यहां से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां भाई बहने आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिसेस संभाल रहे हैं. जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते थे टाइम नहीं है. अब उनके पास इतना टाइम है कि वो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, आकर सेंटर भी संभालते हैं और सेवा भी करते हैं उनकी, जिनको वो जानते भी नहीं है. इतना टाइम आ जाता है. क्यों आ गया? यहाँ का ध्यान रखना शुरू किया, नेगेटिव वाइब्रेशन घटनी हो गई. जैसे यहाँ की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहां लैंड करते हैं, उनको खांसी होने लगती है. पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे ही पोल्यूशन हटी, सफाई में आए, स्टैमिना बढ़ जाता है. आप फिजिकली यहां काम करेंगे, थकावट कम होगी. सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहां और यहां, थकावट तो सारा दिन लगेगी. एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं. और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा. तो यहां से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे, चार्ज्ड. इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है. ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है. कईयों का तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है, पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे. फिर कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा. सो इट इज नॉट इजी. ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है. ऐसे नहीं तीन दिन में, तीन दिन में वी आर गोइंग टू लर्न द वे ऑफ डूइंग इट. नॉट दैट इन थ्री डेज इट विल गेट चार्ज्ड. नो. लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको एक घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज्ड. हमारे यहाँ जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन? इसका क्रिएटर कौन? कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स? आवर सब. जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं? दूसरों पे. हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ. ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसकी इक्वेशन को हमें आज चेंज करके जाना है. हमें गुस्सा कौन दिलाता है? जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से इरिटेट, पावर सारी किसको दे दी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम पीसफुल रहे? क्या ये पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे हम पीसफुल रहे? वो रूडली बात करे हम प्यार से बात करे, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? वो बहुत बहुत बहुत गलत करे हम अच्छे से बात करें, ये पॉसिबल है? और वो तो बहुत बहुत बहुत ही गलत कर दे और हम उसको दुआएं दें, ये पॉसिबल है? हाँ जी. नो. खड़े हो जाइए. नो. हाँ जी हाँ जी. कोई बात नहीं. दे आर बिहेविंग रॉन्गली, वेरी बैड, रूडली, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, एवरीथिंग. कैन वी बी नाइस, काइंड, रिस्पेक्टफुल? नो. व्हाई? Why? Let's think. Why? Why? अच्छा, उनके साथ जो खड़े हैं वो खड़े हो जाइए एक बार, जो साथ में बैठे. भाई सर, please stand. Please stand. हाँ, everyone visualize one person in your life. Two people, right? Two people. He will behave his way. Suppose he shouts right now at you. Can you reply respectfully? Okay. Why no? Not possible. She is behaving her way. Can you respond your way? She is shouting. Can you be quiet? I can't be quiet. No. Who irritates you? She or you yourself? She irritates you. She irritates you. सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम. बैठिए. थैंक यू. दिस इज वन बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट अलाउविंग अस टू बी आर सेल्फ. नाउ ब्रिंग एनी वन पर्सन ऑफ योर लाइफ हियर. हियर एंड यू आर हियर. ये उनका बिहेवियर है. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my thoughts and feelings? Forget behavior, just thoughts and feelings. They are behaving like this. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my words and behavior? Can they irritate me or do I choose to get irritated? Very good. That much clarity we need. Who chose the irritation? Me. Who chose the anger? Me. Who chose to get hurt? Me. Who created those thoughts?

आई हैव टू रिस्पॉन्ड माई वे। एक इक्वेशन आज से चेंज कीजिएगा, चाहे गुस्सा भी आ जाए, लेकिन जब गुस्सा आए तो ये नहीं कहना इनकी वजह से, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू। बार बार कहने से कहने से कहने से क्या हो गया, हमने एक संस्कार क्रिएट कर लिया विच सेड एवरीथिंग आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल। सिचुएशन ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी, तो टेंशन किसने क्रिएट की? सिचुएशन ने। उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, चारों को सेम टेंशन होती है? नहीं, ये एक सेम बिहेव करता है, चार लोग इस तरफ हैं, चार लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती है? नहीं, दिस इज स्टिम्युलस, दिस इज रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस इज इन देयर कंट्रोल, रिस्पॉन्स इज इन माई चॉइस।

their way, I will be my way. फिर आप चूज कर सकते हैं कौन सा वे आपको होना है, लेकिन एटलीस्ट ये ध्यान रखना होगा कि ये रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है, कौन चूज कर रहा है, मैं. गुलामी का जीवन नहीं जीना, दूसरों के व्यवहार के गुलाम. वो रोज अपना व्यवहार करेंगे, हम रोज डिस्टर्ब होंगे, तो हम उनके व्यवहार के गुलाम, हम उनके व्यवहार के गुलाम. स्पिरिचुअलिटी मेक्स अस इमोशनली इंडिपेंडेंट. लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. बच्चे कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता. वाइफ कहती है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगना चाहती. पैसे किसी से मांगना नहीं चाहते, खुशी मांगने के लिए सारा दिन खड़े, प्लीज बी नाइस टू मी सो दैट आई विल बी हैप्पी, सारा दिन खड़े. इमोशनली इंडिपेंडेंट मीन्स फॉर मी टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन. वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना व्यवहार करेंगे. हम रिएक्ट क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है. तो जब वो नेगेटिव फाइल खोलते हैं तो हम भी इमिजिएटली कौन सी फाइल खोल देते हैं, नेगेटिव. और ब्लेम किस पर डाल देते हैं, ब्लेम किस पर डाल देते हैं. एक टीम में 5 लोग हैं, सुबह सुबह एक जना एंटर किया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम सर्दी लेकर वो सुबह सुबह ऑफिस आ गया. शाम तक बाकी 4 में से भी एक को हो गया, तो वो एक ने उसको क्या कहा, मैं बीमार किसकी वजह से हो गया, क्या ये बात सच है, बाकी 3 क्यों नहीं हुए, बाकी 3 क्यों नहीं हुए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है. मैं क्यों हुआ, क्योंकि मेरा वीक है. लेकिन मैंने ये नहीं रियलाइज किया मेरा वीक है, मैंने कहा उनकी वजह से मुझे खांसी हो गई है, तो मैंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया. सिमिलरली वो 5 लोग थे, एक एंटर हुआ, मूड खराब है, सुबह सुबह इरिटेट हो रहा है, सुबह सुबह चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर, मूड ही खराब है, घर से झगड़ा करके आया, उसके मूड की वजह से मैंने भी रिएक्ट कर दिया और मैंने कहा इसकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया. ये नहीं कहा मेरी शक्ति घटी हुई थी तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया. ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ वी थिंक एंड फील इज द बिगेस्ट इल्यूशन. तो एक इक्वेशन, जो भी यहां चले उसका जिम्मेवार कौन, हम. जब हम पावर अपने पास रखेंगे हम चेंज हो सकते हैं. जब हम कहेंगे उनकी वजह से, तो हम किसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, उनको. हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से, हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से. कोई काम कर रहा है, हमने उसको काम करने के लिए बोला, वो टाइम थोड़ा धीरे लगा रहा है, ज्यादा टाइम लग गया, वो ठीक से नहीं कर रहा है, वो ठीक से नहीं कर रहा है, इरिटेट कौन हो रहा है, इरिटेट कौन हो रहा है, हम हो रहे. फिर भी उसने ठीक से नहीं किया तो गुस्सा कौन हो रहा है, हम. एंड जब हम ये कर रहे हैं तो एनर्जी किसकी घट रही है, हम. काम हो जाएगा, काम हो गए, आज बहुत काम हो गए, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली, बहुत कुछ कमाया, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन जिस तरह कमाया, इरिटेट होके, क्रिटिसाइज करके, मजाक उड़ा के, किसी की निंदा करके, जिस तरह कमाया उसकी वजह से घर में खुशी, सेहत और रिश्ते घट गए, बाकी चीजें बढ़ गई. और फिर इतनी इल्यूजन में रहे कि हमने सोचा जितनी चीजें बढ़ जाएंगी उतने हम हैप्पी होंगे. दैट वॉज अनदर वेरी बिग इल्यूजन. तो काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना. काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना. ये बैटरी कैसे रहनी चाहिए, चार्ज्ड. ये ग्लास है, भरा हुआ है. इस पूरे हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ऐसे ऐसे करके स्टेज पे वापस आना है. शाम को ग्लास भरा हुआ होना चाहिए. सुबह निकलना है, सारा काम करना है, शाम को वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए.

आप में से कौन कौन कर सकता है? ये सीढ़ी से उतरना है, पूरे हॉल का राउंड लेना है और ये सीढ़ी से वापस आना है विद ग्लास फो। कौन कौन कर सकता है? सब नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे सब। देखो आप पीछे, हाथ ही नहीं उठाते। कर सकते हैं ना? करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ करना क्या होगा? प्रायोरिटी। नींबू चम्मच खेला था स्कूल में? गुड। भागना था, भागना था। कई बार तो दो लोगों के पाव भी बांधे गए थे साथ में। लेकिन ध्यान किस पे रखना था? नींबू गिरना नहीं चाहिए। इवन अगर आप फर्स्ट आ गए लेकिन नींबू गिर गया, हम हार गए, क्योंकि हम भागने पे ही फोकस कर रहे थे। नींबू तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था और हम एंड में पहुंच गए। हमने कहा ये आई केम फर्स्ट, उधर उसने कहा डिस्क्वालिफाइड। क्यों डिस्क्वालिफाइड? बोले नींबू तो पहले गिर गया था। वो नींबू कहाँ है? वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है? नींबू यहाँ है। भागना है, बहुत भागो। जितना अभी तक भाग रहे थे उससे भी फास्ट भागो। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है, भागते हुए नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू नहीं गिरना चाहिए। एंड डेफिनेटली दूसरे को नहीं ब्लेम करना, मेरा नींबू गिरा दिया। वर्क यहाँ, दैट इज प्रायोरिटी इन लाइफ। ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। वी हैव टू नो व्हाट इज इट देयर वी आर रनिंग। हम भाग रहे हैं लेकिन भागते हुए खुशी गिर गई। कभी कभी तो सुबह सुबह ही खुशी गिर जाती है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले। फिर रास्ते में ट्रैफिक हो तो दूसरी जगह खुशी वहां गिर जाती है। रोज उसी रास्ते जाते हैं, रोज उसी ट्रैफिक में खड़े होते हैं, लेकिन रोज इरिटेट होते हैं। रोज आसपास के लोगों को कुछ कुछ बोल भी देते हैं बंद गाड़ियों के अंदर। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को तो सुना ही भी नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे हैं। एनर्जी किसकी डिप्लीट हो रही है? मेरी। नींबू गिर गया। राजयोग मेडिटेशन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ। मेडिटेशन मीन्स ध्यान। ध्यान, द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल। ध्यान, अपने मन का ध्यान रखना। आपके आसपास सारे लोग भी अपना नींबू गिरा दे, आपका गिरना नहीं चाहिए। और शाम को जब हम घर आए, बैक टू फैमिली, ये ग्लास कैसा होना चाहिए था? आज दोनों पेरेंट्स घर आ रहे हैं खाली ग्लास के साथ। धन भरपूर, आत्मा रूपी ग्लास खाली, तो बच्चों को क्या देंगे? समान ही दे सकते हैं ना फिर सिर्फ, क्योंकि समान भरपूर, शक्ति खाली, दोनों आ रहे हैं, तो बच्चों को क्या मिलेगा? आज स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे सुसाइड की बात करते हैं। ये कोई सक्सेस की निशानी है हमारे समाज की? ये सफलता है? इज दिस सक्सेस? नो। व्हाई? बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स व्हाट वी डिड, वी जस्ट केप्ट रनिंग विदाउट टेकिंग केयर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर स्टिल गोइंग टू रन बट विद टेकिंग केयर। यहां ध्यान रखते हुए भागना है, और फिर वो जो भागना भी होगा ना उसको एंजॉय करेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि ये समान है, ये सुकून है। यहां समान मिलता है, यहां सुकून मिलता है। शाम को हमें सिर्फ समान कमा के घर नहीं आना है। क्या कमा के घर लाना है? सुकून कमा के घर लाना है। बच्चों को चीजें नहीं देनी, सिर्फ परिवार को सुकून देना है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑफिस से हर एक जो घर जाए शाम को, वो सुबह जितना खुश आया था उससे ज्यादा खुश शाम को जाना चाहिए। पीपल शुड गो होम हैप्पियर देन वॉट दे केम इन द मॉर्निंग। देन वी आर सेंडिंग हैप्पी पेरेंट्स होम। We're sending happy parents home. And if we send happy parents home, next day morning वो और happy आएंगे, और उसके अगले दिन वो और happy आएंगे, और day by day हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आज क्या हो रहा है? Day by day हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए जब हम change होंगे, हमारा घर का वातावरण change होगा, हमारा work culture भी change हो जाएगा।
हमारा लोगों के साथ व्यवहार, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सिर्फ अगर हम एक रोज एक घंटा दें, बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं। एक की नहीं बदलती, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच हैज मल्टीफोल्ड रिजल्ट। बहुतों की जीवन बदलेगी अगर एक ने अपनी बैटरी को क्या करना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया। तो एक की बैटरी से औरों की बैटरी भी क्या होती जाती है फिर, और डिस्चार्ज बैटरी से क्या हो जाती है औरों की बैटरी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

Anjali. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो आज रहने वाला है 39 डिग्री, लेकिन अभी आपको तापमान मिलने वाला है 34 डिग्री। इसी के साथ मिनिमम तापमान रहने वाला है 25 डिग्री, लेकिन ह्यूमिडिटी आपको 47% मिलने वाली है और विंड स्पीड रहने वाली है 14। इसी के साथ आज का दिन सनी तो है, लेकिन भाई बारिश आ सकती है, तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

लिए रिस्की हो सकता है। आज का दिन ये अवेयरनेस लेकर आया है और इस दिन ना एक्सट्रीम हीट और समर सेफ्टी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जाता है। अगर बात करें हीट का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले तो एक्सेसिव हीट से डिहाइड्रेशन, डिजीनेस, फटीग और हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। सो इसलिए सोचा मैंने क्यों ना आज सिंपल सेफ्टी टिप्स आपके लिए लेकर ही आऊं। सो आज की टिप ऑफ द डे ये है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड कीजिए, लाइट और कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए, साथ ही आउटडोर एक्टिविटीज पीक आफ्टरनून में कम रखिए, सो दैट कि आप इस गर्मी से आसानी से डील कर पाए। और गर्मियों के साथ ना आता है हीट स्ट्रोक का खतरा। सो भाई कुछ कॉमन साइन है जिनका आपको ख्याल रखना है। अगर बहुत एक्सट्रीम वीकनेस हो रही है आपको, सो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा हेडेक है इंदरों तो भी डॉक्टर को जाकर मिले। और साथ ही अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है और साथ ही कंफ्यूजन एंड डिजीनेस भी है ना, तो भी जाकर डॉक्टर को मिले। सो ऐसे सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। और यही बोलना चाहूंगी, समर को एंजॉय कीजिए पर स्मार्ट प्रिकॉशंस के साथ, और साथ ही अपने लव्ड वंस की हेल्थ का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: जब का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय बाय। हाँ हाँ हाँ।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

शानदार से ब्रेक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। अगर बात की जाए हेल्दी डाइजेशन की तो हेल्दी डाइजेशन हेल्दी लाइफ का इम्पोर्टेंट फाउंडेशन होता है। सो इसीलिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के इम्पोर्टेंस को बताता है। सो अगर बात करें डाइजेस्टिव हेल्थ की, ये हमारी डाइजेशन सिस्टम बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने और एनर्जी मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी डाइजेशन के कुछ सिंपल टिप्स। पहले तो बैलेंस्ड डाइट लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, जंक फूड की लिमिट कर दीजिए और साथ ही प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज मेंटेन करिए। और अगर बात करें कॉमन डाइजेस्टिव इश्यूज के, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना और साथ ही स्टमक डिस्कम्फर्ट, सो ये कुछ साइन है जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ, फिटनेस सिर्फ बॉडी शेप नहीं, अंदर से हेल्दी फील करना भी होता है। सो आज अपने गट हेल्थ को भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दीजिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: Oh, son!

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो। जैसी
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ

0: की सुरक्षा नहीं अपनों की खुशियों की गारंटी है।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जब हम बात करते हैं नेचर की तो हम सीधा पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं, हम सीधा बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है नेचर से फॉरेस्ट में नहीं बल्कि हमारे घर के गार्डन्स और बैल्कनीज में भी जिंदा रहते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गार्डन वाइल्ड लाइफ वीक, यानी कि एक वीक डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग बर्ड्स, बटरफ्लाईज, बीज और टाइनी गार्डन वाइल्ड लाइफ। अगर बात करें ना गार्डन वाइल्ड लाइफ, तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में, नेचर का बैलेंस मेंटेन करने में, एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में। एंड कभी आपने देखा होगा ना आपके घर की बैल्कनीज में बटरफ्लाईज आते हैं, या फिर सुबह सुबह आपने बर्ड्स की आवाज सुनी होगी। कभी सोचा ये नेचर का सबसे ब्यूटीफुल रिमाइंडर है जो आपको पर्सनल लेवल पर मिला है। सो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या वो छोटी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले प्लांट्स और फ्लावर्स ग्रो करें जितना हो सके, बर्ड्स के लिए पानी का एक बोल रखें, एंड साथ ही घर की गार्डनिंग के लिए ना केमिकल पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल करें। जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना माइंड पीसफुल रहेगा, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। सो इस वीक अपने आसपास के टाइनी वाइल्ड लाइफ को नोटिस भी कीजिएगा और उन्हें प्रोटेक्ट भी कीजिएगा। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कपूर। रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर मैं हूँ आर्जुंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर पंकज कपूर का। और अगर इनकी बात की जाए अपनी नेचुरल एक्टिंग और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं, चाहे फिर बात हो सीरियस रोल्स की या फिर लाइट कॉमेडी की, हर कैरेक्टर को इन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल से मेमोरेबल बना दिया है। और अगर बात करें पंकज की, तो आइए पहले ये जानते हैं कि क्या आखिर इन्हें स्पेशल बनाता है। इनका ब्रिलियंट एक्सप्रेशंस, इनके स्ट्रॉन्ग डायलॉग डिलीवरी और साथ ही वर्सटाइल परफॉर्मेंसेस, सो टीवी और फिल्म दोनों में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑडियंस हमेशा याद रखेगी। ग्रेट एक्टर है, वही अपनी एक्टिंग से अपने फैंस के दिलों पर हमेशा राज करते हैं, यानी रियलिटी फील करा देते हैं अपनी एक्टिंग के थ्रू। सो रेडियो महारानी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे पंकज जी, आप ऐसे हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही अपने फैंस का दिल जीतते रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM का छटके।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे तो सुन के जाओ। हेलो, सुन के जाओ।
3: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
4: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
5: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

झटक आता माची सटक सटक बम तेरा गुते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए तुम बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

चार्मिंग स्माइल, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस यही लेकर आती है और अपने फैंस को दीवाना बना देती हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ मच हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का, जिन्होंने स्क्रीन पर आकर ही ना अपने फैंस के दिलों पर राज कर लिया। आज हैप्पी वाला बर्थडे है सुरभि ज्योति का। अगर इनकी बात करें तो टीवी इंडस्ट्री में अपनी एनर्जेटिक एक्टिंग और स्टाइलिश पर्सनालिटी से फैंस के दिलों में एक स्पेशल प्लेस बनाया है। और अगर बात करें सुरभि की, तो आइए ये जानते हैं कि क्या इन्हें स्पेशल बनाता है। सबसे पहले तो वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जानी जाती है, ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस से हमेशा ऑडियंस का दिल जीत लेती है, स्ट्रॉन्ग फैन कनेक्शन लेकर चलती हैं, यानी कि डिफरेंट रोल्स में भी उनकी परफॉर्मेंसेस ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट की है। सो टीवी स्क्रीन पर कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जो आते ही मूड फ्रेश कर देते हैं, उनमें से एक नाम आता है सुरभि ज्योति का। सो विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे सुरभि, आप ऐसे हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही अपने फैंस का दिल जीतते रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, मैं तो सुन के जाओ। हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो है।

क्या कभी सोचा है कि एक क्लिक, बस और बस एक क्लिक, और पूरा फोन हैकर्स के कंट्रोल में जा सकता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि साइबर क्राइम किस तरीके से बड़ी आसानी से हो सकता है। आजकल अगर बात करूँ ना तो मार्केट में एक नया स्कैम आ गया, और स्कैम ये है कि व्हाट्सएप पर फेक लॉकडाउन नोटिस पीडीएफ्स बहुत जोरों से वायरल हो रहे हैं, जो बिल्कुल ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिस की तरह दिखता है। फिर क्या, लोगोस भी सेम है, फॉर्मेटिंग और अर्जेंट लैंग्वेजेस के साथ ये पीडीएफ्स आए हैं सामने। लेकिन पता है यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की फाइल आपको मिलती है तो ये पूरी तरह से डेंजरस हो सकती है। सो इस तरह की फाइल से आपको पूरी तरह अवेयर रहना है। सबसे पहले अगर बात करें तो इस फाइल से क्या नुकसान आपको हो सकता है, पहले तो आपका फोन हैक हो सकता है, पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, साथ ही बैंकिंग डिटेल्स रिस्क में आ सकती हैं। सो अब बात करते हैं कि आखिर बचना कैसे है। जितने भी अननोन पीडीएफ या फिर लिंक्स हैं उन्हें ओपन ना करें, फॉरवर्डेड मैसेज ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, ऑफिशियल अपडेट्स और ट्रस्टेड गवर्नमेंट सोर्सेज को ही चेक करें, साथ ही फोन सिक्योरिटी और अपडेट्स ऑन रखें। और इसी के साथ बस ये कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में हर अर्जेंट मैसेज सच नहीं होता, अक्सर फियर और पैनिक क्रिएट करके ही स्कैमर्स लोगों को ट्रैप करते हैं, इसलिए कहा जाता है अलर्ट रहिए, वेरीफाई करिए और सेफ रहिए। इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
5: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।

0: There's something about tonight, something very special.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं मौसम के बारे में, जहाँ 10:08 हो रहे हैं और इस वक्त अगर तापमान की बात की जाए तो फरीदाबाद शहर में 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ रहता था, जहाँ पिछले कुछ दिन तक आज वही 31 पर पहुंचता नजर आया, जिसकी वजह रही कल की झमाझम बारिश। जी हाँ, कल शाम की अगर बात की जाए इवनिंग में अच्छा खासी जो बारिश की उम्मीदें थी उसमें 50% तो लग भी चली बारिश करी होती है। जी हाँ, इतनी बारिश हुई तो पहले थोड़ी हवाएं चली फिर बारिश हुई और मौसम थोड़ा अच्छा होता नजर, जिससे कि अभी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही बारिश का मौसम रह सकता है, यानी ये वीकेंड घूमने वाला धमाकेदार बनने वाला है, ऐसा मौसम हो जाएगा। बाकी ऐसे भी चर्चा होते रहेंगे, उससे पहले कॉल

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा है लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के बारे में। जी हाँ, फरीदाबाद शहर की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में अब पेशेंट्स को डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस सुविधा मिलने वाली है, जहाँ इसको हाल फिलहाल स्टार्ट किया जाए। अगर बात की जाए फरीदाबाद शहर की, जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं जिला हॉस्पिटल BK और NIT 3 हॉस्पिटल में डायलिसिस कराने की सुविधा उपलब्ध है। कई बार ज़्यादा बिजी होने के चक्कर में पेशेंट्स को दिक्कत होती है, इसीलिए अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में भी ये स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे और भी कई ट्रीटमेंट्स आपको बहुत ही लो कॉस्टिंग और नो कॉस्टिंग पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो जो पेशेंट्स हैं उन तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बाकी ऐसी भी चर्चाएँ होती रहेंगी, उससे पहले एक ऑर्डर।

0: के आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करने।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: डांस बसंती।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरले आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरले आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरले आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और यहाँ वेलकम है आप सबका भी। और गलियारे की अगर बात करें, यानी कि सिनेमा के गलियारे की, जहाँ बहुत सी कहानियां इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में रिलीज होने को हैं तैयार। यही कहानियां तो आए दिन सिनेमा घरों में तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होती रिलीज होती नजर आती हैं। कहीं होता है पंजाबी स्टार्स का धमाल, तो कहीं होता है हिंदी पट्टी के स्टार्स का कुछ नया कमाल। कहीं होता है हॉलीवुड की कहानियों का नया आगाज, कुछ नए ट्रेलर, टीजर, फर्स्ट लुक, तो कई नए गाने जो कि रील्स पर ट्रेंड करते नजर आते हैं। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूं सिल्वर स्क्रीन से ओटीटी प्लेटफॉर्म तक की। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि सिनेमा के गलियारों में घुमाने से पहले, सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके। और ये ट्रैक आप सभी के लिए।

गर्ल फ्रॉम द मूवी ओके जानू और शो चल रहा है फिल्मी फ्लो। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे होस्ट की बात कर लीजिए, एक ऐसे जज की बात कर लीजिए, शेखर सुमन। जहाँ शेखर सुमन की बात की जाए तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा छाए रहे थे सिल्वर स्क्रीन पर नहीं लेकिन टीवी स्क्रीन पर जरूर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। जी हाँ बिल्कुल, कॉमेडी लाफ्टर नाइट्स की अगर बात की जाए, लाफ्टर नाइट्स में नजर आते थे दोनों की जोड़ी ने अच्छा खासा धमाल मचाया था। यह शेखर सुमन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, लगभग 14 साल बाद एक नया टॉक शो लेकर के आया जिसका नाम है शेखर टॉनिक। बात करें शेखर के इस शो के बारे में जो कि हाल फिलहाल स्ट्रीम किया गया है यूट्यूब पर और हर फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ सबके सामने आते हैं। शो में स्पेशलिटी ये है कि सेलिब्रिटी इंटरव्यू फॉर्मेट से थोड़ा अलग रखा गया है। इसका फोकस ह्यूमन मोमेंट्स, कैंडिड कन्वर्सेशंस, ह्यूमर और कुछ नए फैक्ट्स पे चर्चा होती नजर आती है। जाकर बात की जाए शेखर के बारे में तो ये कुछ नया शो लेकर के आया, फैंस को उम्मीदें थी शायद कुछ ना कुछ कॉमेडी से रिलेटेड, कॉमिक से रिलेटेड ही होने वाला होगा क्योंकि हमेशा जब भी टीवी स्क्रीन पर छाए हैं तो अपने कॉमिक शोज को लेकर ही, लेकिन इस बार कुछ हटके डिफरेंट लेकर के आए जैसे कि रेडियो महारानी है कुछ हटके, तो देखते हैं फैंस कितना पसंद करते हैं शोज को। देखिए अभी तो ज्यादा एपिसोड्स कुछ टेलीकास्ट नहीं हुआ, आज दूसरा ही एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है, देखते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं, कितना पसंद किया जाता है, फिर टीआरपी क्या हासिल करते हैं अपने शो के अकॉर्डिंग ये देखना होगा। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले कॉर्डर

0: जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिलौती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ फिल्म टॉनिक लेजर के शो फिल्मी फ्लेवर। अच्छा देखिए, अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है जल्दी से हजम ना हो पाएगी, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ नहीं हो पाएगी बॉस, इतनी जल्दी तो बात मेरी हजम नहीं होगी, तो एक काम कीजिए, डाइजेशन के लिए कोई ना कोई टैबलेट, कोई ना कोई गोली या फिर कोई ना कोई चूर्ण लेके बैठे हुए। मैं बात करने जा रहा हूँ इस वक्त कुछ ऐसी, जहाँ एक किरदार को हम हमेशा देखा करते हैं सबको हंसाते हुए, कुछ ऐसे डिफरेंट किरदारों के साथ जहाँ उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कहना, उनका स्टाइल सबको हंसा जाता, लेकिन इस बार उनकी बात सबको फंसा जाएगी। बात ही कुछ ऐसी है यार, एक शॉर्ट फिल्म लेकर के आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड स्टार राजपाल यादव, जहाँ हमेशा सबको हंसाते नजर आए, इस बार सबको हंसाते नहीं, सबको अपने नए किरदार के साथ नजर आ रहे हैं, एक रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। जी हाँ, शॉर्ट फिल्म में प्रेम करते नजर आ रहे हैं, और ये बात सुनते सार हर कोई एकदम से चौंक गया। चलिए, फुल फ्लेज फिल्म बेशक ना हो, लेकिन शॉर्ट फिल्म में ही सही, राजपाल यादव इस बार मेन लीडिंग किरदार में नजर आ रहे हैं तृष्णा मुखर्जी के साथ, और ये कहानी शॉर्ट फिल्म जो रिलीज हुई है, राजपाल यादव ऐसे डिफरेंट किरदार में सबके सामने आए हैं कि लग रहा है यार कुछ ऐसा नहीं जहां राजपाल यादव नया करते नजर आ रहे हो, ऐसा मजा हुआ आर्टिस्ट शो हो रहा है उस शॉर्ट फिल्म में, जहां लग रहा है बॉस यही तो है मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल आर्टिस्ट की पहचान, जो राजपाल यादव शॉर्ट फिल्म में करते नजर आए हैं, जिसे कहानी का नाम है उबाल। तो आप भी देखिए और बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो टिकट कटवा लेना।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी.
8: ये राशन के 15,000 सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के.
8: अब 0 रुपए कैसे दो.
7: ओहो भूल ही गई थी. अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
8: पक्का.
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
10: हर घर

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। आपका फिल्मी टॉनिक यानी कि मैं दोस्तों आरजे मॉनिक यहाँ पे चर्चा करते हैं राही अनिल के बारे में। जहाँ अगर बात की जाए तो तुम बाहर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म से पहचान बनाई तो कहीं पे शॉर्ट फिल्म मांझा से भी सबके दिलों पर राज करते नजर आए। यहीं पे अब एक और बढ़िया कहानी वन विदिशा के साथ सबके सामने आ चुके हैं। 37 सेकंड के इस टीजर ने ही लोगों की अटेंशन ग्रैब करी। विजुअल्स इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंटल लगे कि इंटरनेट पर इमीडिएटली डिस्कशन स्टार्ट हो गया। कुछ लोग तो इसे फ्यूचरिस्टिक कह रहे हैं तो कुछ इसे लुकअप कंप्लीटली कहते नजर आए कि अनएक्सपेक्टेड था यार कुछ ऐसा डिफरेंट विजुअल्स देख। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यह प्रोजेक्ट नॉर्मल मेनस्ट्रीम फिल्म जैसा फील होता ही नहीं बल्कि एक बोल्ड एक्सपेरिमेंटल सिनेमैटिक अटेम्प्ट जैसा लग रहा है। इसी वजह से वन विदिशा को लेकर के क्यूरियोसिटी का लेवल काफी हाई है और इतना डिफरेंट इम्पैक्टफुल ये विजुअल्स रहे कि फैंस या स्टार्स भी ये कहते नजर आए कि यार राही अनिल की बात करें ना तो कुछ हटके ही सबके सामने आएगा। हम इसे सेम अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को नए अवतार में नई स्टोरी लाइन के साथ आना ये नहीं सोच सकते। राही अनिल हैं तो कुछ अलग कुछ डिफरेंट ही हमेशा लेकर के सिल्वर स्क्रीन पर आएंगे तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है। देखते हैं कितना प्यार बटोरती नजर आएगी ये कहानी, क्या रहेगी कलेक्शन, कितना प्यार मिलेगा इसके स्टोरी लाइन को, तो क्या मेथड के साथ ये सबके सामने आई है। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: back up.
1: फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

जसलीन रॉयल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में। इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार कहे जाते हैं, जहाँ पे अपनी नई कहानी को लेकर के चर्चा में बने हुआ वेलकम टू द जंगल। वेलकम टू द जंगल का फर्स्ट लुक जब से सोशल मीडिया पर ड्रॉप आउट किया गया है, अक्षय के फैंस बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अब ट्रेलर टीजर का। जहाँ अक्षय कुमार के फर्स्ट लुक की बात की जाए तो जो काफी नॉस्टैल्जिक और पॉजिटिव नजर आ रहा है। स्टार्टिंग से ही इतनी बड़ी स्टार कास्ट, जहाँ देखिए यार स्टार कास्ट में कितने लोग, 8, 10, 15, 20, लेकिन यार यहाँ तो स्टार कास्ट की गिनती खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गिनती 30 पर 35, 40 पर जाकर के रुक रही है। जी हाँ, इस कहानी में इतनी बड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली है। जहां बात करें विजुअल्स में, अक्षय रग्ड स्टाइलिश और स्वैग मोड में नजर आ रहे हैं, जिसे फैंस को वेलकम फ्रेंचाइज वाली ओल्ड एनर्जी वापस फील होते नजर आई। कि जहां पर अक्षय बिल्कुल भी सीरियस मोड में नहीं है, कह रहे हैं यार जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि परेशानियां है ही इतनी। उनका कहना है कि यार ये तो छोटी परेशानी, आगे देखो और कितनी आएंगी। तो वेलकम टू द जंगल में अब, लेकिन यहाँ पे परेशानी जंगल में क्या धमाल मचाने वाली है। जहां अक्षय के साथ अगर बात की जाए, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अर्शद वारसी, जॉनी लीवर, रविंद्र टंडन, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा जैसे स्टार्स का नाम भी जुड़ा हुआ। कहानी अगर बात की जाए, मीका बाजी भी नजर आ रहे हैं और जितने मुझे लगता है फनकार, जितने कॉमेडियंस हमें इंडस्ट्री में दिखाई देते हैं कहानी, और वो सारे इसी कहानी में दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे वेलकम टू द जंगल का तो पता नहीं, लेकिन जंगल में लाफ्टर तो बहुत ज्यादा होने वाला है। देखते हैं अब इस कहानी का ट्रेलर टीजर कब आउट होता है और कब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। रिलीजिंग डेट की रहेगा इंतजार। बाकी ऐसे ही और भी चर्चा सिनेमा के गलियारों से आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं अनुष्का शर्मा के बारे में, जहाँ सिनेमा से काफी लंबे गैप में रीजन बताती हुई नजर आई कि वो सिर्फ टाइम पास या गेम में बनी रहने के लिए फिल्म्स नहीं करना चाहती। उन्होंने पहले भी कहा था कि फैमिली, वर्क लाइफ बैलेंस और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देती हैं, इसलिए सेलेक्टिव रही हैं। अभी तक उन्हें ऑफर हुई कहानियों में लगा कि कोई भी ऐसी कहानी नहीं रही जिसे वो करना चाहती हैं। बाकी कुछ ऐसा किरदार रहा तो जरूर सबके सामने आएंगे। लेकिन इसी भी चर्चा होने लगी कि काफी अर्से पहले उनकी फिल्म शूट हुई चक द एक्सप्रेस शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी रिलीज नहीं। रीजन कहे जा रहे हैं, जहां सबसे पहले था कि इसे ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया था, वहां भी स्ट्रीम नहीं किया गया। और बातें आ रही कि प्रोड्यूसर्स के अलग होने की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है बीच में ही लटका रह गया। अब देखते हैं कि यार ये कहानी को कब रिलीज किया जाएगा या फिर ये सिर्फ बंद बक्से में ही रह जाएगा। और क्या बहुत जल्द अनुष्का का कोई किरदार देखने को मिलेगा या फिर अब ये चर्चा ही बनी रहने वाली है, क्या होगा क्या नहीं रहेगा, इंतजार। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं चलती रहेंगी।

0: अपना KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना न भूले, सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। जहां दोस्तों बच्चों हो चला है सिनेमा के कैलेंडर का। सिनेमा के कैलेंडर की बात करें तो आज बर्थडे है इंडियन सिनेमा के उस एक्टर का जिन्होंने हमेशा प्रूव किया कि असली एक्टिंग सिर्फ डायलॉग्स बोलना नहीं बल्कि करेक्टर को फील करवाना होता है। ऐसा एक्टर जो स्क्रीन पर हीरो बन के नहीं करेक्टर बन के जीता है, कभी कॉमेडी से हंसा देते हैं तो कभी इमोशनल सीन से साइलेंस क्रिएट कर देते हैं और कभी सिर्फ एक्सप्रेशन से पूरा सीन यादगार बन जाता है। बात करूंगा एक ऐसे स्टार की जिसको पावर हाउस परफॉर्मर भी कहा जाता, कौन है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनाऊंगा कुछ और बढ़िया बढ़िया से गाने।

रिकॉर्ड हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और यहाँ सिनेमा के कैलेंडर में हम आज बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के बढ़िया स्टार जो आज बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे हैं पंकज कपूर। बात करें इनके बारे में तो जहाँ पे पंकज कपूर का एक्टिंग जर्नी थिएटर से शुरू हुई और थिएटर बैकग्राउंड ने उनकी परफॉर्मेंस को अलग डेप्थ दी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग लेके उन्होंने टेलीविजन और फिल्म्स दोनों में अपनी स्ट्रांग आइडेंटिटी बनाई। उनकी एक्टिंग की सबसे खास बात यह है कि रियलिज्म, वो ओवर एक्टिंग नहीं करते, लाउडनेस नहीं करते, फिर भी उनका हर सीन ऑडियंस को याद रह जाता है। इसलिए उन्हें एक्ट्रेस का भी एक्टर कहा जाता है। उनके मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, मकबूल में उनकी इंटेंस परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। जाने भी तो यारो कल्ट क्लासिक बनी और टीवी पर ऑफिस का मुसद्दी लाल कैरेक्टर आज भी ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर्स बना हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमेडी और सीरियस रोल्स दोनों में उनका ग्रिप इक्वली स्ट्रांग माना जाता है। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: अरे अरे ए

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ सिनेमा के कैलेंडर में हम बात कर रहे हैं पंकज कपूर उन एक्टर्स में से हैं जो रोल चूज करते वक्त सिर्फ स्क्रीन स्पेस नहीं कैरेक्टर की डेप्थ देखते हैं। इसी वजह से उनका नाम और उनका काम क्वालिटी और वैरायटी दोनों नजर आती है। फैंस के लिए वो सिर्फ एक्टर नहीं है, एक्टिंग इंस्टीट्यूशन जैसे हैं और उनके परफॉर्मेंसेस आज भी एक्टिंग लवर्स के लिए इंस्पिरेशन माने जाते हैं। आप बताइए जो कि पंकज कपूर साहब के कॉमेडी में या सीरियस में कौन से रोल ज़्यादा पसंद करते हैं आप, कौन सा अवतार आपको सबसे ज़्यादा दिल पर छा गया, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9648968896 पर। बाकी ऐसी अभी चर्चा होती रहेंगी लेकिन आज नहीं, अब से मुलाकात होगी मंडे के दिन सेम टाइम सेम जगह करूँगा डेरो बात। तब तक सुनते रहे रेडियो हमारा।

0: खराब सड़कों से छुटकारा, सुरक्षित सफर हमारा।
1: दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी बिना किसी वजह से डांस कर रही है तो समझ जाइए, सड़क पर गड्ढे अपनी धुन पर नाच रहे हैं। कब तक ये झटके सहेंगे? अब आइए आवाज उठाएं और बदलाव लाएं।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

कभी कभी एक हंसी के पीछे छुपा होता है एक लंबा सफर, एक ऐसा सफर जहां आंसुओं ने भी अपना रोल निभाया होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर मुस्कान ला देता है, और उनका नाम है राजपाल यादव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। साल 1971, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, एक छोटा सा गांव, सिंपल जिंदगी और बड़े सपने, यहीं पैदा हुए राजपाल यादव। उनका बचपन कोई फिल्मी नहीं था, ना ग्लैमर ना स्पॉटलाइट, बस एक आम जिंदगी जहां सपने देखना भी एक लग्जरी होती है। लेकिन राजपाल के अंदर एक अलग सी एनर्जी थी। वो लोगों को ऑब्जर्व करते थे, उनकी आदतें, उनकी बोली, उनका अंदाज, शायद वही ऑब्जर्वेशन बाद में उनकी कॉमेडी का बेस बना। स्कूल के बाद उन्होंने थिएटर की तरफ कदम बढ़ाया। यह आसान नहीं था क्योंकि एक्टिंग को करियर बनाना उस वक्त एक रिस्की डिसीजन माना जाता था, लेकिन राजपाल यादव ने रिस्क लिया। वो लखनऊ के भारतीय नाट्य अकेडमी गए और फिर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचे। गांव से निकला एक लड़का अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार था, और फिर मुंबई ने उन्हें बुला लिया। और कैसे बने वो सुपरस्टार, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: हर कॉमेडियन की लाइफ में एक फेज होता है जहां हंसी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं होती, वो स्ट्रगल को सरवाइव करने का तरीका बन जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन राजपाल यादव के लिए ये शहर पहले एक टेस्ट था। छोटे रोल्स, साइड कैरेक्टर्स और कभी कभी तो सिर्फ एक दो सीन्स। उन्होंने टीवी शोज में काम किया जैसे मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। उनकी हाइट और उनका यूनिक फेस इंडस्ट्री के टिपिकल हीरो स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होता था, लेकिन राजपाल ने इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। उन्होंने डिसाइड किया, मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं याद रहने वाला कैरेक्टर बनूंगा। और धीरे धीरे लोग उन्हें नोटिस करने लगे। उनकी टाइमिंग, उनका एक्सप्रेशन और वो नेचुरल कॉमिक फील सब अलग था। स्ट्रगल लंबा था, लेकिन राजपाल रुकने वालों में से नहीं थे। उन्हें बस एक ब्रेक चाहिए था, और वो ब्रेक आया एक अनएक्सपेक्टेड रोल के साथ। कौन सा था वो रोल, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

लंबे लोट मैं भी सीटा थले पालिया पाइया ने तेरा ने जैकटा लाइटा वालिया नी तू भी सीख गई है तोरा बिलक जैकटा वालिया मित्रा ने जैकटा लाइटा वालिया नी तू भी सीख गई है तोरा।

कभी कभी एक रोल पूरी जिंदगी बदल देता है, और राजपाल यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। राजपाल यादव के लिए वो जिंदगी बदलने वाला रोल था ना, वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे। 2000 का दौर, बॉलीवुड में कॉमेडी का गोल्डन फेज, फिल्म हंगामा, चुप चुप के, गरम मसाला, भूल भुलैया, और हर जगह एक नाम कॉमन था, राजपाल यादव। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, उन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए, चाहे वो छोटा पंडित हो या एक कंफ्यूज नौकर, हर रोल में उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती थी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका इनोसेंस। उनकी कॉमेडी लाउड नहीं होती थी, वो सिचुएशन और एक्सप्रेशन से आती थी। ऑडियंस को लगता था ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये सच में ऐसा ही है, और वही उनकी जीत थी। राजपाल यादव अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कॉमेडियंस में से एक बन चुके थे। और आगे क्या क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए और कैसे करा उन्होंने कमबैक, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जिंदगी सिर्फ हंसी का नाम नहीं, कभी कभी वही जिंदगी सबसे टफ सीन्स भी लिख देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। सक्सेस के बाद भी राजपाल यादव की लाइफ में चैलेंजेस आए, कुछ पर्सनल और लीगल इश्यूज ने उनके करियर को स्लो कर दिया। वो फेज उनके लिए आसान नहीं था, इंडस्ट्री भी फास्ट मूव करती है और जब आप रुकते हो तो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन राजपाल ने हार नहीं मानी, उन्होंने वापस काम शुरू किया। छोटे रोल से ही सही, बट काम कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने प्रूव किया कि असली आर्टिस्ट वही होता है जो गिर कर भी खड़ा हो जाए। आज जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस स्माइल कर देती है, क्योंकि कनेक्शन अब भी वही है। और कुछ हंसी कभी कभार दिल से आती है, और मेरे ख्याल से राजपाल यादव को देखते ही हम सबके अंदर जो स्माइल है वो हमेशा दिल से आती है। तो करेंगे राजपाल यादव की लाइफ के बारे में और भी बात, कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स को फेस किया इसके बारे में और भी बात करेंगे, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

राजपाल यादव की। राजपाल यादव की जर्नी सिर्फ कॉमेडी की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, सेल्फ बिलीफ की और अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने की। उन्होंने कभी अपने आप को चेंज नहीं किया, ना ही किसी और जैसा बनने की कोशिश की। उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी पहचान बना लिया, इसलिए उनकी कॉमेडी हमेशा रियल लगती है। आज जब भी उनका कोई भी सीन टीवी पर आता है, लोग रुक कर देखते हैं, क्योंकि राजपाल यादव सिर्फ जोक्स नहीं सुनाते, वो एक फीलिंग क्रिएट करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर जिंदगी की टेंशन भुला देती है। और शायद इसीलिए राजपाल यादव सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक रिलीफ है। एंड राजपाल यादव की कोई भी मूवी की बात करी जाए तो वो हमेशा कम पड़ जाएगी, क्योंकि उनके रोल्स हमेशा से अमेजिंग थे, भले ही छोटा पंडित हो या फिर हो भांडिया या फिर हो मारतंड फ्रॉम द मूवी ढोल। तो राजपाल यादव के बारे में थी ये कहानी, और आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए कामयाबी की उड़ान में हम और भी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे, और आप किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहते हैं आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

एक बात कही गई है ना कहीं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। ये लाइन हम सबने सुनी होगी, पर ऑनेस्टली बताओ कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में इस बात को अप्लाई किया है। कभी ना कभी हम सब एक ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां लाइफ हमें टेस्ट करती है, और उस वक्त हम डिसाइड करते हैं गिव अप करना है या लेवल अप। मैं हूं आरजे गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहां बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं होता, स्टोरीज होती हैं, स्ट्रगल होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट रियल लोग होते हैं। और आज के एपिसोड में कहानी सिर्फ एक सक्सेस की नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी स्ट्रगल में हैं, जो सोच रहे हैं क्या मैं भी कर पाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आज आपके पास से सब कुछ छिन जाए, सिर्फ आपकी मेहनत बचे, तो क्या आप फिर से शुरू करेंगे? क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास कभी कुछ भी नहीं था, ना पैसे, ना सपोर्ट, ना लैंग्वेज, सिर्फ एक चीज थी, अंदर का जुनून। और वही जुनून एक दिन उसे ले गया इंडिया के सबसे पॉपुलर फूड ब्रांड में से एक तक। बट वेट, नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप उनका नाम सुनेंगे ना तो कहानी और थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड, और आप सोचिए कि कौन है वो इंसान जो आज हजारों लोगों को रोज इंस्पिरेशन देते हैं। और हाँ, आप गेस भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। रेडियो महारानी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और डीएम में जाके बताइए कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। अब टाइम आ गया है उस नाम को रिवील करने का, वो नाम जो प्रूफ है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, माइंडसेट मैटर करता है। इनका नाम है प्रेम गणपति। यस, वही प्रेम गणपति डोसा प्लाजा के फाउंडर। आज जिनके आउटलेट्स इंडिया से लेकर दुबई और न्यूजीलैंड तक हैं, पर एक वक्त था जब मुंबई की सड़कों पर ये इंसान अकेला बिना पैसे बिना लैंग्वेज के खड़ा था। सोचिए, 17 साल का लड़का सपने लेकर आता है मुंबई और जिस इंसान पर ट्रस्ट करके आया वो उसके 200 रुपए लूट कर चला जाता है। न घर लौटने के पैसे, न किसी को फोन करने का ऑप्शन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? शायद वापस चले जाते या फिर लड़ते। प्रेम ने डिसाइड किया, मैं यहीं रहूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा, बट कैसे, कहां से स्टार्ट किया, क्या इन्होंने कभी गिव अप का सोचा, इस सब के बारे में बात होगी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां से वापस आना ऑप्शन होता है, पर रुककर लड़ना चॉइस होती है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, मैं हूं गीत। अब तक मैंने आपको बताया है कैसे प्रेम गणपति मुंबई पहुंचे और कैसे एक झटके में उनसे सब कुछ छिन गया। अब जरा इमेजिन करिए, एक 17 साल का लड़का जिसे ना शहर की भाषा आती है, ना कोई पहचान है, ना पॉकेट में पैसे हैं, और उसी शहर में उसे डिसाइड करना है भागना है या बनना है। प्रेम जी का बचपन किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा नहीं था, बल्कि वो रियलिटी थी जिसे हम सब में से बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में 7 भाई बहनों के बीच एक बच्चा जिसे जल्दी समझ आ गया था घर चलाना है तो खुद को रोकना पड़ेगा। 10th के बाद पढ़ाई छूट गई क्योंकि ड्रीम से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी थी। चेन्नई में छोटी मोटी जॉब्स 250 रुपए महीने, और वो भी खुद के लिए नहीं घर भेज दिए जाते थे। क्या आपने भी कभी अपने सपनों को फैमिली के लिए पॉज किया है? अब यहाँ बढ़ते हैं मुंबई में और फिर वही उनकी जिंदगी, पर उसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कहानी का। महीम की एक बेकरी, बर्तन धोने की जॉब, 150 रुपए महीना, लेकिन वहाँ से इनकी एक चीज बदल गई थी, माइंडसेट। प्रेम जी ने सिचुएशन को पनिशमेंट नहीं माना, उन्होंने इसे ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। दिन में काम, रात में वहीं सोना और धीरे धीरे ऑब्जर्व करना कैसे चलता है किचन, कैसे मैनेज होते हैं कस्टमर्स और कैसे बनता है फूड बिजनेस। और इसी बीच एक चीज क्वाइटली ग्रो हो रही थी, डोसा बनाने का उनका शौक। कभी कभी हमारे पैशन हमें बचा लेते हैं जब दुनिया हमें तोड़ रही होती है। 2 साल तक छोटी छोटी जॉब, सेविंग, ऑब्जर्विंग, लर्निंग, और फिर 1992 में इन्होंने डिसाइड किया अब अपना कुछ शुरू करना है। कुछ बड़ा प्लान नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, बस थे कुछ बर्तन, एक चूल्हा और एक विश्वास। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास से बिजनेस चल जाता है? जब इन्होंने पहली बार अपना ठेला लगाया तो क्या लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया, या फिर शुरू हुई इनकी असली स्ट्रगल? मैं बताऊंगी इस कहानी को, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

दीनू जेम्स की आवाज में गाना और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। स्टार्टअप शुरू करना आसान है, उसे सरवाइव कराना असली खेल है। 1992 वशी स्टेशन के बाहर एक छोटा सा ठेला, इडली डोसा और एक सपना। प्रेम गणपति ने शुरुआत कर दी थी, पर यहाँ से स्टोरी आसान नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली गेम शुरू हुआ। इन्होंने अपने दो भाइयों को बुलाया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, अकेले जितना कर सकता हूँ साथ में उससे ज्यादा कर सकता हूँ। लेसन फॉर यू, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो टीम सिर्फ लोग नहीं होते, एनर्जी होती है। अब बात करते हैं स्ट्रगल की। दिन भर काम, कस्टमर्स को बुलाना, क्वालिटी मेंटेन करना, और फिर भी गारंटी नहीं कि आज प्रॉफिट होगा या लॉस। लेकिन प्रेम जी ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने अपने स्टॉल को डिफरेंट बनाया। जहां बाकी लोग कैजुअल थे वो क्लीन थे, बाकी लोग लुंगी में थे वो पैंट शर्ट में थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डोसा नहीं बेच रहे थे, एक्सपीरियंस बेच रहे थे। और

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी
1: पाते। कई लोग यहाँ टूट जा किया, इन्होंने डिसाइड किया ठेला नहीं रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन रेस्टोरेंट खोलना मतलब बड़ा रिस्क। क्या वो रेडी थे, क्या उनके पास पैसे थे, या फिर ये डिसीजन उन्हें और नीचे ले गया, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इस गाने के बाद, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़की।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: बुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता चली।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फ्लावर्स की। और आज हमने जाना कितनी खूबसूरत हो सकती है कोई गली, लेकिन अगर इस वैली की बात की जाए तो यहाँ तक पहुँचना इजी नहीं, ट्रैक करना पड़ता है इस पूरी वैली तक पहुँचने के लिए। बीच में आते हैं पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और कभी कभी बारिश, पर शायद यही स्ट्रगल की वजह से जब वैली सामने आती है तो आंखों को यकीन नहीं होता कि कोई वैली वाकई इतनी खूबसूरत हो सकती है जैसे नेचर ने मानो रिवॉर्ड दिया हो। अगर बात की जाए इस वैली की तो वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये रिमाइंडर है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें हैं जहाँ नेचर इंसान से ज़्यादा पावरफुल लगता है। वो कहा है कि हर फूल की उम्र छोटी होती है पर उसकी खुशबू याद रह जाती है, बिल्कुल कुछ अफसानों की तरह। अगर कभी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ लगने लगे तो एक बार वैली ऑफ फ्लावर्स ज़रूर जाना। हो सकता है जो सुकून आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको इस वैली में मिल जाए। सो आज हमने बात की वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। कल्चर कारवा में आज हमने जाना एक ऐसी जगह के बारे में जो अपनी महक से हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देती है। कल फिर मिलेंगे एक और जगह, एक और कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके।
3: हाँ भाई, ठंडक मिल गई कि नहीं मिली? क्योंकि मौसम कुछ ज्यादा ही मजेदार हो गया था कल शाम को और आज भी शाम को ऐसा ही तो है। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड डू यू नो आज माउंट एवरेस्ट डे है, तो हम क्या करें, जॉब छोड़ दें? नहीं ना, जॉब नहीं छोड़ सकते, बट हाँ क्या क्या कर सकते हैं, इन सब के लिए मैं आ चुका हूँ आप सभी के साथ अब अगले 3 घंटों के लिए। बस यही बताने आया था कि आ गया हूँ। और आज तो है तगड़ा वाला मुकाबला, राजस्थान वर्सेस गुजरात, तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात मगर इस गाने के बाद। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना, आपके घर के आसपास भी ये हो रहा होगा और पूरे फरीदाबाद में बस इंद्रदेव यूं ही बरसते रहें तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। बता दूं आप सभी को कल भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है एंड अब अगले 3 घंटों के लिए मैं आ चुका हूं आप सभी के साथ। फ्राइडे का दिन है आज और फ्राइडे को मस्ती ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, और इतना प्यारा मौसम जब हो जाए फिर उसके बाद तो फ्राइडे डबल मजा हो जाता है। एंड एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने प्लान किया कहीं बाहर घूमने जाने का, यानी कि पहाड़ जाने का अगर आपने सोचा है तो प्लीज अभी थोड़े दिन रुक जाइए, क्योंकि सभी लोग निकले पड़े हैं, सब पहाड़ पे गए हैं। ऐसा ना हो पहाड़ ही नीचे आ जाए जैसे पिछले साल हुआ था, जैसे उससे पिछले साल हुआ था। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात दिल्ली से लेके फरीदाबाद तक, और उसी के साथ साथ पूरे देश भर की सारी अपडेट्स लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। एंड आज तो राजस्थान और गुजरात का मैच भी है जो कि डिसाइड कर देगा, डिसाइडर मैच है, वैसे बता देगा कौन फाइनल में जा रहा है, कौन खेलेगा बेंगलोर के साथ। करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है, अपनी पसंद का गाना चलवाना, किसी को बर्थडे विश करवानी है तो कॉल कर सकते हैं मुझे 9654896896, ये मेरा नंबर है, आराम से कॉल कर लो। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला देता हूँ। अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही तो मैं आपको बोलूंगा तू हके देख ले, अपनी आवाज में नहीं किंग की आवाज में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड गुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मौसम अच्छा हो गया है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो मौसम इज ऑसम। बट इसके साथ साथ एक और बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को आदत है अभी इस टाइम अपने एसी को 22 या 23 या 24 पे चलाने की, तो थोड़े दिन के लिए चेंज कर लो, मतलब एक दो दिन के लिए तो कर ही लो, क्योंकि कल रात को मैंने भी 24 पे चलाया था, उसके बाद जो सुबह हालत हुई यानी कि नाक बंद हो गई थी मेरी, एंड वो तो अभी दवाई खा के आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि मौसम अभी कुछ दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड फरीदाबाद में क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है उसके बाद कुछ दिन तक तो कीचड़ ही कीचड़ देखने को मिलता है। और वैसे भी सेक्टर 21 साइड अगर आप जाओगे तो वहां पर नई पाइपलाइंस डली है, बहुत सारे एरियाज में नई नई पाइपलाइंस डल रही है, पाइपलाइंस डल रही है। और ये पाइपलाइन जो डली है ना, उसके ऊपर जो मिट्टी वापस से डाली गई है तो वो मिट्टी अब तब्दील हो गई है कीचड़ में, और ये कीचड़ जाता है सीधे घर तक, और घर के अंदर अगर हम लोग लेके चले गए फिर से उसके बाद मम्मी की डांट सुनने को मिलती ही है। खैर अभी मुद्दा कीचड़ भी नहीं है, मुद्दा अभी घर की डांट भी नहीं है, मुद्दा ये है कि कब तक ऐसे आप लोगों को मौसम देखने को मिलेगा। तो ये मौसम अभी कुछ दिन तक तो बरकरार रहेगा, अगले हफ्ते मान लो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर 38-39 तक ही मिलेगा। तो नो डाउट गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, बस मैं ये प्रे करूंगा कि उमस ना हो जाए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाने चलाऊंगा, और गाने के साथ साथ बात करेंगे उस गर्मी के बारे में जो आज शाम को टीवी पर होने वाली है, यानी कि राजस्थान वर्सेस गुजरात, इसके बारे में करेंगे बात। मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे ग्लास तो पीती जा सुन।
2: ना

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

से थोड़ी ही देर बाद मुकाबला होने जा रहा है राजस्थान वर्सेस किसका, सिर्फ एक टीम है गुजरात का। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान ने तो हैदराबाद को बहुत अच्छे से धूल चटाई थी, मगर अब क्या होगा जब ये गुजरात के साथ टकराएगी। और अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं, कर लेते हैं इसके बारे में भी बात। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। जब से गुजरात टीम आई है ना आईपीएल में, तब से गुजरात वर्सेस राजस्थान 10 मैच हुए हैं, जिनमें से 7 बार गुजरात जीती है और 3 बार राजस्थान जीती है। और बात करें साल 2025 की, तो पिछली बार 4 बार आमना सामना हुआ था इनका और 2-2 बार दोनों जीते थे। और इस बार सिर्फ 2 ही मुकाबले हुए हैं साल 2026 में और 1-1 दोनों जीत चुके हैं। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब अहमदाबाद में मुकाबला हुआ था तो गुजरात हार गई थी, जब जयपुर में मुकाबला हुआ था तो राजस्थान हार गई थी। तो आज कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो वक्त बता ही देगा। और आप सभी को बता दूं ये आज मैच होने जा रहा है न्यू चंडीगढ़ में, तो देखते हैं वहां पर आज ये मैच कौन जीतेगा। और यहाँ पर एक धुएंदार बल्लेबाज है, धुआंदार कह लो, धुएंदार कह दो या फिर धुरंधर कह दो, क्योंकि बल्लेबाज जब बैटिंग पर उतरता है ना ये तो कमाल ही मजा देता है। पिछली बार 29 गेंदों में 97 रन, और वो तो लास्ट बॉल पे कैच आउट हो गया था, नहीं तो वो भी छक्का ही था और 100 हो जाती। और कैसे कैसे रिकॉर्ड्स ये और तोड़ सकता है, करेंगे इसके बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ। वापस अगर बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में, क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड है आईपीएल का जो शायद अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, मगर आने वाले टाइम में वैभव उसे तोड़ देगा। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: आप सबको वो मैच याद है जब अकेले एक बंदे ने 175 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 66 गेंदों में। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड अगर मैं बात करूं एक ऐसे मैच की जहां पर उन्होंने 175 रन बनाए थे, किस प्लेयर ने बनाए थे याद करो, जरा याद करो। ये था साल 2013 और बैंगलोर का मैच था पुणे के अगेंस्ट, और 66 बॉलों में 175 रन बनाए थे क्रिस गेल ने। और इस मैच, ये मतलब इस मैच को जीता, ऑब्वियसली बात है जीता तो बैंगलोर ने था, बट चिन्नस्वामी स्टेडियम बैंगलोर में ये मैच हुआ था। और फिर उसके बाद से ये रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ा है, मगर अब लोग कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी है जो ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कौन हो सकता है वो खिलाड़ी जिसका आज मैच है, जो ओपनिंग करने आता है, जो सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 साल का लड़का है, और कुछ लोग इसकी एज के ऊपर भी डाउट करते हैं, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगा वैभव सूर्यवंशी वो खिलाड़ी है जो कह रहे हैं कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है कि वो 175 स्कोर वाला रिकॉर्ड तोड़ देगा, और हो सकता है कि आज के मैच में भी तोड़ दे। नो डाउट, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, अनसर्टिनिटी का खेल है ये। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, अभी मैं आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, और ये गाना सुनिए, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में।
1: In the jungle.

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: 89.6 FM कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

अमेजिंग था ही था, मगर इससे भी ज्यादा अमेजिंग चीजें अभी इस टाइम हो रही है हम सबके आसपास। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी इस टाइम सोशल मीडिया पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज चल रही है और वो है हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड। आई डोंट नो व्हाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? हम सब लोग भाई हैं, हम सब लोग पूरे इस देश के वासी हैं और ये पूरा का पूरा मिलके इंडिया बनाता है, इतना खूबसूरत इंडिया है, मगर फिर भी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं बॉयकॉट उत्तराखंड। फिर वहां से कुछ क्रिएटर्स उठते हैं, वो भी हरियाणा के क्रिएटर्स हैं, और वो लोग आके बोल रहे हैं कि क्यों बॉयकॉट उत्तराखंड, व्हाई बॉयकॉट उत्तराखंड। और मतलब दोनों की बातें बिल्कुल अच्छी हैं, बट जो लोग बॉयकॉट उत्तराखंड कह रहे हैं उनकी बातें बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही है। तो इसके ऊपर मे बी आप लोगों ने बातें सुनी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, बट मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग कह रहे हैं बॉयकॉट उत्तराखंड, वहां पर उत्तराखंड से रिप्लाई आ रहा है दैट्स द स्पिरिट, आप इसको बॉयकॉट बिल्कुल कीजिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये ऑनलाइन जो लफड़ा चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, ये कब खत्म होगी? बट एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मेरे दोस्त गए हैं उत्तराखंड घूमने के लिए, मेरे कुछ दोस्त गए हुए हैं मनाली घूमने के लिए, एंड जो मनाली साइड गए थे ना, वो एक चीज से परेशान हो गए, उसे कहते हैं ट्रैफिक जाम। कह रहे हैं बहुत जाम लग रहा है, बहुत लंबा लंबा जाम लग रहा है। और जो उत्तराखंड गए हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग परेशान हो गए फॉरेस्ट फायर से, क्योंकि जंगलों में आग लगी हुई है। ये दो तरीके से होती है, गर्मी की वजह से कभी भी जंगलों में आग नहीं लगती, ये आग लगाई जाती है, और जब ये आग लगाई जाती है तो फिर इसको बुझाना भी पड़ता है और वहाँ के फायर फाइटर्स काम करते हैं इसके ऊपर। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में होती रहेगी बात, मगर उसी के साथ साथ पहाड़ों की बात आई है। तो आज है माउंट एवरेस्ट डे, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

नामक सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे अगर मैं बोल दूं कि चल मार्केट तक पैदल चलते हैं, तो वो पैदल चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। और बातें उनकी ऐसी होती है कि चल भाई ट्रैकिंग पे चलेंगे। मैं बोलता हूँ भाई तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। फिर वो कहते हैं एक दिन तू देखियो मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाऊंगा। फिर मुझे हंसी भी आ जाती है। खैर, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। ट्रैकिंग की जब भी बात आती है, लोग कहते हैं कि चलो ट्रैकिंग पे चलते हैं, बट ट्रैक इज नॉट फॉर एवरीवन। पहले ही बता देता हूं, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे, और अगर आप मेंटली भी फिट नहीं है तो भी आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर ट्रैकिंग की बात आई गई है तो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ट्रैक कहा जाता है माउंट एवरेस्ट का ट्रैक, और माउंट एवरेस्ट डे है आज। क्यों मनाया जाता है? To honor the first successful ascent of Mount Everest. किसने चढ़ा था? लोग बहुत नाम लेते हैं, बट मैं बोलना चाहूँगा उससे पहले बहुत सारे नेपाल के लोग चढ़ चुके थे ऑलरेडी, बट उनका नाम हिस्ट्री की बुक्स में कहीं पर भी नहीं है। और बता दूँ आपको, जो ये हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, ये सबसे ऊंचा खड़ा है कहाँ पर? हिमालयाज में। और कहते हैं ये पूरी की पूरी दुनिया, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी का ताज बन के बैठा हुआ है। तो अगर आपके मन में भी आता है कि आप लोग भी माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे, तो गो फॉर इट, मैं ये बोलना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ एक गाना चलाऊंगा रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए, ये गाना।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: अर्ज कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो।
1: इरशाद,
0: अरे आगे खाली हो जाएगी।
1: क्या
0: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
1: कौन है?
0: रोडवेज वाले।
1: ओके ओके।
0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ।
0: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
0: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: 6000
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर 4 सवारी तो अपनी गोदी में भी 3 बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

तो भला हो इंद्रदेव का कि उन्होंने थोड़ा सा मौसम ठीक कर दिया, नहीं तो आसपास छबील लगती हुई तो दिखी रही थी। और छबील को बुरा नहीं कह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी लगाने वाले थे और मेरे दोस्त गर्मी में बिल्कुल भी नहीं खड़े होते, तो मुझे अकेला ही पानी पिलाना पड़ता सबको, इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान इंद्रदेव का भला हो, थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, हम भी लगा लेंगे अभी कुछ दिन बाद। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड दिस इज द, कहते ना एक अपने मन में, हमारे मन में कोई भी हम सेल्फिशनेस नहीं रख रहे और हम लोग कोई ग्रीड नहीं रख रहे, लोगों को निस्वार्थ भाव से पानी पिला रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है जब हम लोग छबील पर जाते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पानी पिला रहे हैं लोगों को, बहुत ही कहते हैं ना पुण्य का काम है ये। बट इसमें कुछ दोस्त हमारे होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी भी लोगों को पानी पिलाया तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि कुछ दोस्त होते हैं जो वहाँ पर भीड़ तो ऐसी इकट्ठी कर लेंगे कि हम भी काम करेंगे, मगर काम के नाम पर वो सिर्फ ऐसे दिखाते जैसे काम कर रहे हैं, नहीं करते वो काम कोई भी, उनसे बोल दो पानी का एक जग उठा के आगे रोड पर चले जाए, ना ना ना ना ना ये भी नहीं होता उनसे। तो मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज है वर्ल्ड हंगर डे, और वर्ल्ड हंगर डे क्यों मनाया जाता है करेंगे इसके बारे में बात, और हंगर और थर्स्ट में डिफरेंस है मुझे पता है, बट स्टिल मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि वो आज वर्ल्ड हंगर डे है, करेंगे इसके बारे में बात, मगर उससे पहले आप सभी के लिए मिक्स मैशअप गाना वापस आकर

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

जब भी मैं मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो देखता हूँ जहाँ पर लोग किसी को खाना खिला रहे हैं तो मैं उस टाइम भी यही सोचता हूँ कि काश मैं भी इनको खाना खिला पाता। और ये चीज़ हम सबको करनी चाहिए और मुझे लगता है कि सबके मन में आता है ये ख्याल। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ और आज है वर्ल्ड हंगर डे। और देखो ये चीज़ किस लिए मनाई जाती है, ताकि पूरे विश्व में साथ में ये जो भूख है इसको हम लोग मिलकर मिटा सके, क्योंकि भूख जो है वो कुछ भी करवा देती है इंसान से। और मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देख चुका हूँ अपनी लाइफ में जिनको देखने के बाद लाइक आई वॉज हार्ट ब्रोकन। मेरे को ऐसा हो गया था कि ऐसा क्यों हुआ और मैं वहाँ पर क्यों नहीं था। एक बार मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पर एक बूढ़े से अंकल थे, उनको ज़मीन पर रोटी पड़ी मिली, उन्होंने प्लेटफॉर्म से जो नल होता है उस पर वो रोटी धोई और वो रोटी उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये होती है भूख। तो आई गेस लेट्स कम टुगेदर टू बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन हैज अ प्लेट टू फुल देयर पेट, ये कहूँगा बस। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि हम सबको ना मिलकर कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हाँ, जितने भी लोग हैं जिन जो नीडी हैं, जिनको भूख लग रही है, तो उनको निस्वार्थ भाव से खाना मिल जाना चाहिए बिना पैसों के, और वो भी अच्छी क्वालिटी का। क्या कहते हैं आप लोग, बात में दम है ना? चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए गाना ये है गफूर फ्रॉम बैट्स ऑफ बॉलीवुड।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना तो मन भी है, मिले जे कोई चाहता है बात हुए।

बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी देर पहले वर्ल्ड हंगर डे की। और जब खाने की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए हम लोगों को, और खाना हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ मिलावट हो। बट आज की डेट में हम सबको पता है कि खाने में मिलावट होती ही है। अभी कुछ टाइम पहले मैं आप सभी के साथ बात कर रहा था कि एक जीरा कंपनी थी, जीरा बनाती थी एमपी के अंदर, उसमें सीमेंट मिला हुआ होता था। सोचिए, सीमेंट खा रहे थे हम लोग, और मतलब हम लोग तो नहीं खा रहे थे वैसे, बट स्टिल जिनके पास वो जीरा गया है उन लोगों ने सीमेंट खाया है। और फिर इसके बाद उस कंपनी को पूरा का पूरा बंद कर दिया गया। मगर यहाँ पर गेम नहीं रुका, क्योंकि फिर से पुलिस और जो खाद्य विभाग है उनको फिर से एक और जगह पर छापेमारी में कुछ मिला है, और वो है इस बार नकली धनिया पाउडर। और ये कोई ऐसा वैसा धनिया पाउडर नहीं है, हम लोग घर में यूज़ करते हैं धनिया पाउडर, अपनी सब्जियों में यूज़ करते हैं और खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग धनिया पाउडर। मगर यहाँ पर धनिए में भूसा मिलाया गया था, ख़राब क्वालिटी का पाउडर मिलाया गया था, केमिकल मिलाकर नकली मसाला तैयार किया जा रहा था। वो जो खुशबू आती है धनिया पाउडर की, उसको नकली बनाया जा रहा था। तो सोचिए, ये लोग कैसे लोग हैं जो खाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसा खिलवाड़ के लोगों की ज़िंदगी, लोगों की सेहत ख़राब हो सकती है, मगर इनको अपना पेट, अपना जेब भरने के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या आप लोग भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि नकली चीज़ सप्लाई कर रहा है, नकली चीज़ बांट रहा है लोगों में? तो आप लोग सीएम फ्लाइंग को कंप्लेंट डाल सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ आप लोग अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, मगर उन्हीं में से एक मिक्स मैशअप गाना। फ्राइडे है तो ऐसा गाना तो बजना ज़रूरी है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। Young money.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

आप सभी को मैंने बताया था कि डॉन 3 के ऊपर बहुत ही बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी, मगर इसको लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गॉसिप लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, और वो गॉसिप आप लोगों को सच में बहुत पसंद आएगी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ। डॉन 3 जिसका एक टीजर सा लॉन्च कर दिया गया था साल 2023 में, अनाउंस कर दिया गया था कि रणवीर सिंह इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डॉन फॉर द अपकमिंग सीरीज। डॉन 3 सीरीज नहीं बोलूंगा, मूवी बोलूंगा, पार्ट 3 है डॉन का। बट यहाँ पर अभी साल 2026 में कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए बढ़ गई क्योंकि रणवीर पाजी ने बोला मैं तो नहीं करने वाला ये फिल्म, और उन्होंने बैकआउट कर लिया, और यहाँ पर फरहान अख्तर एंड टीम ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो देखो अगर फिल्मी स्टाइल में बात करें ना तो ऐसा हुआ होगा कि रणवीर सिंह ने बोला भाई मैं तो नहीं कर रहा, तुझे जो कर सकता है कर ले। फिर उधर से फरहान भाई साहब ने भी बोला होगा कि देख अब मैं क्या करता हूँ। फिर उन्होंने बैन कर दिया रणवीर सिंह को कि फिल्में नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर उसके बाद बीच में एंट्री होती है हमारे भाईजान सल्लू भाई की, और सल्लू भाई कह रहे हैं कि देखो ऐसा है तुम लोग ना दोनों शांत हो जाओ, चुपचाप मैटर सुलझा लो। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब ये सूत्र है कौन ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मेरे पास जब आई तो मैंने सोचा क्यों ना फरीदाबाद की पब्लिक को बताया जाए, और डॉन 3 के ऊपर जो भी अपडेट आएगी वो आगे आने वाले टाइम में मैं देता रहूँगा। वैसे तो मैं बता दूँ आपको ये गॉसिप थी और ये गॉसिप मैंने आप सब तक पहुँचा दिया, मगर उसी के साथ साथ एक गाना चला रहा हूँ जो कि पुराने बॉलीवुड के दिनों को आपको याद दिला देगा। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

हो सकता है कि आपके घर के आसपास वाले एरिया में अभी बौछार पड़ी होगी थोड़ी देर पहले, या फिर अगर अभी तक नहीं पड़ी है तो पड़ जाएगी, नो डाउट। आज तो वैसे भी फ्राइडे है, और फ्राइडे को मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग आज पार्टी करने जा रहे हैं तो पार्टी रिस्पॉन्सिबली, ये भी एक माइंड में रख के चलिएगा। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगा, वो ये है कि स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बारिश होती है ना जब, तो एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है, वाटर लॉगिंग, पानी जमा हो जाता है कहीं कहीं सड़कों पे। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक गाड़ी वाला आता है जिसको ये लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि जो लोग सूखे हैं उनको भी मैं गीला कर दूं, और फिर वो बंदा फुल स्पीड में गाड़ी लेके जाता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा शख्स मुझे सुन रहा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता हो, तो मुझे अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाइए, क्योंकि कल ही मैंने देखा है एक नौजवान गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए सड़क किनारे जितने भी लोग थे जो सूखे खड़े थे, उसने सोचा मेरी जिम्मेदारी है इनको गीला करने की, और उसने जिम्मेदारी निभाई बखूबी। और फिर उसके बाद लोग क्या करते, लोग बस अपने मुँह से शब्द निकाल रहे थे जो कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकता कि कैसे शब्द थे। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और इसी के साथ साथ बारिश जब हुई है तो गाड़ी थोड़ी सी स्लो चलाइए। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा, बेकार में गाड़ी मत चलाइए इधर से उधर, क्योंकि पेट्रोल वैसे ही महंगा हो रहा है, डीजल वैसे ही महंगा हो रहा है, और मिडिल ईस्ट की टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक AI वर्जन वाला गाना, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

मैं लिखूं वो जो मैं कहना चाहूं। और आज था एवरेस्ट डे और साथ ही साथ वर्ल्ड हंगर डे, इसके बारे में हमने करी खूब सारी बातें। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आज मैंने एक बात बोली थी और वो ये थी कि पहले सीमेंट मिला हुआ जीरा मिला था और उसकी बड़ी खेप मिली थी, उसको नष्ट कर दिया गया था। डोंट वरी, फरीदाबाद में नहीं मिला, ये एमपी में मिला था बहुत टाइम पहले। मगर फिर एक और बार राजगढ़ नाम की जगह है, वहां पर फिर से छापेमारी की गई तो पता चला कि जो धनिया पाउडर होता है वो भी नकली बनाया जा रहा है। उसके अंदर भूसा मिलाया जा रहा है, उसके अंदर ना जाने कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, खुशबू के लिए भी मिलाए जा रहे हैं केमिकल्स। तो लोग कितना गिर चुके हैं ना। वैसे बात तो सही है। खैर, हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं। हम लोग बस ये कर सकते हैं कि जब भी आप लोग मसाले खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि खड़े मसाले खरीदिए, घर में खुद से मिक्सी में पीसिए और उसको एंजॉय कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाजत, मैं निकलता हूँ यहाँ से। फ्राइडे है ना ब्रो, तो मेरी भी तो पार्टी होगी ना बाहर जाके। हाँ, तो मैं निकलता हूँ, घर जाऊँगा यहाँ से सीधे और घर जाके खाना खा के पार्टी करूँगा। अभी फिलहाल आप सभी से लेता हूँ इजाजत, मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे की शाम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लम्हे किताबों के पन्नों में कैद रहते हैं, कुछ लफ्ज मोहब्बत की स्याही में डूब कर लिखे जाते हैं और कुछ कहानियां बस दिल से दिल तक पहुंचने के लिए जन्म लेती हैं। और अभी वही सफर शुरू हो गया है जहां फासले मिटते हैं और मोहब्बत की आवाज आपके कानों से होते हुए आपके दिल में उतरती है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और ये खास सा जो सफर है, ये जो खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहाँ हम सिर्फ शेरो शायरी नहीं सुनते बल्कि हम उन अल्फाजों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आह नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन और माइनस हो जाएगा।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

वैसे अचानक से कोई ये सवाल आपसे पूछ ले, है इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो लीजिए पेश है पहला शेर और शुरुआत होगी आज उस खूबसूरत से शायर से जिन्होंने मोहब्बत को जिया, जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर भी हुई, और नाम है इनका साहिर लुधियानवी, जो हमारी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहते हैं मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप वही है जो सिर्फ महसूस हो, जिसमें पानी की जिद ना हो, बस चाहने की ख्वाहिश हो। और शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी की शायरी में हमें मोहब्बत एक सुकून और दर्द के साथ मिलती है। 1913 में लुधियाना में इनका जन्म हुआ। बचपन में पिता से अलगाव, जवानी में मोहब्बत की नाकामी और तन्हाई, इन सब ने उनकी कलम को एक ऐसा रंग दे दिया जो मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम, समाज और इंसानियत के रंग भी समेटे हुए था। ये बहुत ही खास से शायर हैं और इनकी जो शायरी है जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती ही है। और साहिर का नाम अगर मैंने लिया है तो अमृता का नाम ना है, ऐसा नहीं होगा। साहिर का इश्क अमृता प्रीतम के साथ अधूरा रह गया और ये सब जानते हैं, लेकिन इस अधूरेपन ने उनकी शायरियों को अमर कर दिया। मतलब यार ये शायरों की ना खास बात होती थी कि वो अपनी मोहब्बत बेशक अधूरी छोड़ दें लेकिन पन्ने जरूर भर दिया करते थे उसी मोहब्बत के नाम जो अधूरी रह गई। ऐसे ही इनके कुछ किस्से हैं जो बहुत ही खास हैं, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं इन्होंने जो लिखा है उस पर कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो ये परेशानी है भाई, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी मत होना, ये पहली शर्त प्यार की होती है, ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन कितनी सीधी सी बात है ना, लेकिन दिल को आर पार चीर देने वाली बात है। साहिर की खासियत ही यही थी कि वो मोहब्बत को सिर्फ दिल और फूल में नहीं बांधते थे, बल्कि उसके पीछे का दर्द, समाज की बेरुखी और इंसान की मजबूरियां भी दिखाते थे। तो ऐसे ही कुछ बातें और ऐसे ही इनके कुछ किस्से मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।

एस चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और एआर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है यार ऐसे गानों को बनाना, जो उनमें फीलिंग्स होती हैं, जो उनमें वो कनेक्टिविटी होती है कि जो सीधा हमारे दिल तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस गाने में। ऐसे गाने बड़े मुश्किल हैं आज के टाइम में बनने। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और खासा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिल लुधियानवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं। बहुत ही सीधी सी बात बोलते हैं लेकिन दिल को आर पार कर देती है ये बातें। और उनकी एक ना खास सी नज्म है जिसका नाम है ताजमहल। वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें। जहां उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगों से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज्मे शाही में गरीबों का गुजर क्या है। चलिए इस बात को आपको बहुत ही सरल सी भाषा में समझाती हूँ। साहिर जहाँ अपनी महबूबा से कहते हैं, ताजमहल तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक निशान सही, तुम्हें इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत ही सही, लेकिन मेरी महबूबा मुझसे कहीं और मिला करो, क्योंकि ये शाही महफिले गरीबों के लिए नहीं बनी है। जहाँ वो बादशाहत की ताकत के निशान है, वहाँ मोहब्बत की मासूम रूहों का जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस ताजमहल के पीछे छुपी हकीकत देखनी चाहिए। मतलब यहाँ उन्होंने ताजमहल को जो कनेक्ट किया है अपने इश्क से, वो बहुत खूबसूरत सी बात है, जिस बात पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठा पाया। खैर, अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना पहुंचा सके आपको।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क भाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी, जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर दा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में, दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख। ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया। और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: के तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में

ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्कबाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्कबाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्कबाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, केयर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिसे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके।
3: हाल कैसा है जनाब का?
4: क्या ख्याल है आपका?
3: तुम तो मचल गए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कोई भरोसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: कर दे जो समझाए उसी की मची धूम जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

ये सारी दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अब

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: कहा तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Yours, पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है।

असलियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

तारीख, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ वो पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: इंग्लिश इस्टैब्लिश।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।